0: लेडी डॉक्टर फॉर फिजियोथेरापिस्ट द फिरना तर्जुमेरात रसपोरे सनातरमा डॉक्टर विकास अहमद कंसल्ट पोरे गायटोपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी मोबाइल नंबर दे 0335-666-2878 द्वैम नंबर दे 0336-444-5888।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

सो कोवली सी चिजान द बेरडोन सर बिल्कुल टच साथी जी और गर्मी पता मौसम की द बाहर द होटल उड़ांदी उड़ांदी जान बेलडोन सन ब्लॉक जी मिनी सन ब्लॉक दे दी चुकम कीमत दे आम सन ब्लॉक ने कीमत देर जाता अरजान दी और सन ब्लॉक द कीमत द अरजान दो सर सर जिदन योदासी खोंदोर फार्मूले दा जिदा यूजल जस्ट वन टाइम जिदा गारंटी सर्वेले शमा जिता सिर्फ यूजल जानते बेलडोना सन ब्लॉक मरोल लू आउ ची यूजल मोल गोल जी अब दिक्रिम को खोला बियाम जिदा ने उसले दो रजे उदरे रजे बेला सबर के गोर हम बेजी समुच को में फेस वाश दी आगे बर तो दो मिनटों की दना दना पता लगी समुच को स्क्रब रहा दी आगे बर तो दो मिनटों की

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: दादी रेडियो दिलबर स्तासु दजरावास
2: स्तासु पल चैनल रेडियो दिलबर
1: रेडियो दिलबर रेडियो
3: आई कैन फाइंड न्यू वेज टू मोटिवेट देम
4: एंड फॉर दैट ऑल दैट
5: रियल टॉक रियल लाइफ रियल पीपल रियल रेडियो The station that just doesn't stop. 94 FM.
0: Radio Dilbar. Ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
1: Dadi Radio Dilbar.
3: I can find new ways to motivate them.
4: And for that.
6: And all that.
5: Real talk, real life, real people, real radio.
3: The station that just doesn't stop.
7: 94 FM.
8: सर्दी हो या गर्मी रेडियो दिलबर आपके संग संग
1: दादी रेडियो दिलबर स्तासु दजरावास
2: स्तासु पल चैनल रेडियो दिलबर
0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए
1: रेडियो दिलबर रेडियो
3: आई कैन फाइंड न्यू वेज टू मोटिवेट देम
4: एंड फॉर दैट
6: एंड ऑल दैट
5: Real talk, real life, real people, real radio.
3: The station that just doesn't stop.
7: 94 FM.
8: Sardi ho ya garmi, Radio Dilbar aapke sang sang.
1: Dadi Radio Dilbar.
2: स्तासु पल चैनल रेडियो दिलबर
0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.com

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।